0: दोस्तों साथियों, आपका स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के सह लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। और जी हां, आप ये तो शनिवार है तो आई एम श्योर एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग देमसेल्व्स। और क्रश से आप हमें सुन रहे हो फ्रीक्वेंसी 96.9 प्लेन्स मीडिया से। और अगर बाहर देखते तो थोड़ा अंधेरा हो चुका है, बट इट हैज़ बीन अ वेरी गुड डे। काफ़ी बढ़िया था आज यहां क्रश का माहौल। और जी हां, ये जो शो है आज जो हम लाए, हमारा 700th शो है ऑन प्लेन्स मीडिया। और शुक्रिया करना चाहेंगे साहिल, हु इज गोइंग टू हेल्प मी विद पैनलिंग टुडे। और साथ साथ में जो लोग बाद में हमें जो फेसबुक में देखेंगे, वी विल ट्राई टू स्विच ऑन टू फेसबुक इन से अनदर 5 मिनट्स ऑल्सो। तो हमारे साथ में शिवनील आ चुके हैं स्टूडियो एंड ही विल बी हेल्पिंग अस विद द लाइव वीडियो। और जैसे हमारे पास ज्यादा करके गेस्ट रहते हैं, और इस बार वी आर गोइंग टू वेलकम नेहा शर्मा जी और शेखर किशोर जो बहुत पहुंच चुके हैं हमारे स्टूडियो में, उससे हम बात करते चलेंगे। और आज जो विषय है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, व्यंगम योग। और एक इवेंट भी आ रहा है इसको लेकर, इसके विषय में हम बात करेंगे कब आ रहा है और उसकी जो जानकारी ये हमें नेहा और शेखर देने वाले हैं। और शेखर एक्चुअली इज कम ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो उससे हम बात करते चलेंगे। और जो लोग खेल कूद की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं, तो ऑफकोर्स ऑल द क्रुसेडर्स फैन कॉन्ग्रेचुलेशन हम कहेंगे। एंड आई एम श्योर यू आर क्वाइट ओवर द मून बीटिंग चीफ्स। वॉज नॉट श्योर, आई डोंट नो व्हाट वॉज योर थॉट्स साहिब।
1: It was a very, very interesting and close game. Mm. It had gone either way, 36-32 score line run. Mm-hmm. And last minute, it was interesting. It could have gone either way.
0: Yeah, bilkul. Well, prediction was a bit tight this time. I'm sure many people would not have been able to predict because both teams are very strong.
1: First half, Chiefs were winning.
0: Yep.
1: And then it was going backwards and forth. There was no clear winner ki kaun jeetega.
0: जी हाँ, और हम क्या करेंगे कि जो हम इंटरव्यू करने वाले हैं, हम जब बात करेंगे नेहा जी से और शेखर से, उससे पहले मैं एक गीत सुनेंगे, उसके बाद में हम अपना जो इंटरव्यू जारी करेंगे। और इंटरव्यू के बाद में वी आर गोइंग टू प्ले, जैसे लास्ट टाइम हमने जो प्ले किया था हमारे जो लास्ट शो में था, अवर इंटरव्यू विद मिनिस्टर टोड मेकले, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के विषय में हम बात कर रहे थे बिटवीन ऑब्वियसली न्यूजीलैंड एंड इंडिया, जो अभी हाल ही में जो साइन हुआ है उसका जो हम ज़्यादा करके जो पॉजिटिव साइड आपने सुने होंगे। और इस बार भी में हमें मौका मिला बात करने, हमने बात की है मीगन वुड से जो लेबर के जो स्पोक्स पर्सन थे, और हमने वही उसी विषय पे बात किया जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। और जैसे हम न्यूज़ में सुन रहे थे कि लेबर डिड कम ऑन बोर्ड बिकॉज